voll.

say, Robbie?

0: कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज वही चीज हो गई ना। Sons.

help me at his sanskar. So

Сиван бег дыш на рена. Апи капи свапан.

Listen.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Christie said, first.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती जाने दे देती है।

अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे करने लग जाती है।

Kirawa. Morcea.

Nossa.

Isso me dá

ऐसे समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मेजॉरिटी बच्चों का फर्श का पोता मेल देखा, क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी है उल्टा। देखना सुनना सोचना बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस दूसरा है सबकॉन्शियस, मिटाते हैं लेकिन मन के प्लेट को स्लेट को कागज को कुछ भी को पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता, इसलिए जो चार शब्द बाप दादा ने सुनाया वो सदा नहीं चलते। अगर मानो बिल्कुल मन की प्लेट को कागज को पूरा नहीं मिटा तो पूरा साफ न होने के बदले अगर आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा, अर्थात सर्वगुण सर्वशक्तिया धारण करने जाओ तो सदा और फुल परसेंट में होगा, बिल्कुल क्लीन भी हो क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां बिल्कुल साफ है, फिरत से और पीती से सबसे सूखियम रूप है, वेब्रेशन के रूप में रह जाते
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: geval ik door mijn slechte panai melanieke koosjes kan doen. Je zit dat ik ooit had gereden. Que o Yad Kardel os que vocês está sabe qual a pena pandia é na esse sabe qual a pena pandia na to que o a sabe nem quer saber o jesse sabe nem anbogia a marida ऐसे नहीं माधुवन की दादी हमारी ऐसे सभी प्रमाण एक तो मैं अपनापन अनुभव कर को याद करना इसी को याद कहा जाता है समान बनना विशेषता धारण करना इसको कहते हैं याद ठीक है ना हर एक यही सोचो सब अपने महसूस ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है एक परिवार है ना दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में लेकिन सभी को अपना बन दिया तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपना बन दे सकते ये दिल की स्थिति ये दिल के वाइब्रेशन अपना बनता
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखाएं है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। जो तत्व बाप के पास आते हैं हमको बताओ कब तक दुख चलेगा। खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे। मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आई है उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्रह्मांड जीवन आवश्यक

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चेक करो ज्ञान स्वरूप बनाओ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बनाओ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला यथारथ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है गर्भ इंद्रियोचित बनना। हर गर्भ इंद्री पर स्वराजदारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। इससे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कल्पना करे, चाहे सने संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

किसी भी परिस्थिति में

0: तो नाचने करने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले साथ साथ पाप के आशाओं

और अब घर चलना है। ये कानों में गूंजना चाहिए, बार बार अब घर चलना है। तो धुन लगा दो, स्मृति में।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय पर मान सबको बेहद के फैराग फिरती में समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की फैराग आद से अंत तक रहा। भोलेनाथ का भंडार, से मेरा समझकर पर्सनल अपने वृत्त एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं बच्चे अन्य अन्य बच्चे और सभी बातों से उबरा हूं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी जैसे मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये पक्का हो गया, पक्का है ना? चलते फिरते क्या सोचते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा आत्मा है। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, अमृत वेले उठते ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तनम में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए। वाह, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कार्य पूरा हुआ और अपने शांति के स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंचे स्थिति में चले जाओ। एक तो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, आपके वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देंगे। आपकी दृष्टि दूसरे को भी भर पाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब सेवा में नवीनता क्या लाएं? जो अभी तक सेवाएं चली हैं, उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं?
2: नयापन ये लाओ जो आने वाली है और लोगों नजदीक कम से कम स्टूडेंट तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बनावे, दिलों में ऐसी रिजल्ट

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना, अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान रिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना, तैयार हो। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके मारा तो है ही, नहीं तो कैसे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Прости.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छे अच्छे मत किया, क्या हम आपस से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना स्पान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूखियम चेकिंग फिर भी अपने आप को करो। और अगर ऐसी सुख्यम चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज दे दे। अगर मनन करो को बिसी

चोट की

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डरती, एक तो देवान, वो तो नेचुरल सबको अनुभव है 63 जन्म का, फिर देवान प्रकट हो जाते हैं, और दूसरा है दे अपमान। देवान और दे अपमान ज्ञान में जितना आगे जाती है

0: नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती, दिल खुश चेहरा खुश।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ये आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच रहा है। बाप दादा भी रेस्पान में कह रही है, वाह बच्चे वाह, हर एक के दिल में कौन सभी क्या कह रहे मेरा बाबा, ये गीत तो सुना है ना बाप बच्चों का। बाप कहते हैं मेरा बच्चा, हर बच्चा कहते हैं मेरा बाबा। कितना मीठा आवाज, बस मेरा जो कह रहे हैं ना, उसकी कमाल।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बर्तन काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

0: पैसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा गिफ्ट ले, गिफ्ट दी, अच्छा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। Yeah.

0: is somebody there. घर बार छोड़ के नहीं गए, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देंगी? क्यों क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है? जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते, चाहते हो तो ये पर्तक्य परमान है। इससे सभी आकर्षित होके सुते ही
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में देवता बीच में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सौ होंगे समझ तो है, एक सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेही माना थे इसे ज्यादा हो गया तो देख के साथ ही सुबह हो संस्कार कमजोरियां सब देख के साथ और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देंगे। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विधेय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवरेडी नहीं भी बनो, लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं एवरेडी को। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल के राजाधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वो बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, किसमें गिनती होंगे, किसमें होगा, अल्प काल में होगा ना। तो क्या पाप से पाप अवनाशी और वर्षा क्या लिया अल्प काल अच्छा लगता है तो बहुत काल कितना काल है वो नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं गए, और बहुत काल का अभी का सुख, अभी की श्रेष्ठ स्थिति उससे भी वंचित हो जाते। इसलिए क्या करना है, बहुत काल करना है पीछे वाले करना है, हाथ उठा रहे, बहुत अच्छा। अगर किसी के भी बुद्धि में ये डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो, डेट को भी आपको लाना है। समय तो एवरेडी अभी भी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ। आप संपन्न बने और समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे ही अब माने की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनार बन बाप समान न्यारे और प्यारे, बाप समान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पुरुषोत्तम संगम योगी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? ये परमा

से परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे inside.

पवित्र आत्माएं

0: off of me.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रत भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा ब्राह्मण जीवन किटराग से सेव हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत है, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं हो। Okay. आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते। तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Whitney.

संबंध देके पदार्थ देके संस्कार दे शब्द सुव्यात और विशेष

Cerquero for me.

children.

Yes.

कि जैसे सर्विस के फलक झलक आप लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति का प्रभाव, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपके प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान है चाहे छोटी और परों से भी कांकर कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को मरा देती क्यों?

Son canchas que vaya. Primar canchas ya de. Tan así. Por cien.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है, बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है, यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है, जब मन का टीवी देख तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्ति, स्थिति को इमर्ज करो। बाप दादा सभी बच्चों को इस समय, बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुनगाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना

0: ये भी हिम्मत है ना, तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है। अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले फर्क है।

चाहे नंबर वन हो, लेकिन बच्चे और बाप का मिलन तो होता है ना। बच्चे

0: मुबारक भी दे दे। कि वाह बच्चे वाह, ये बाप और बच्चों का मिलन अमर है और अमर रहेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो भी जितने भी आपके सेवा साथी, देखने से अनुभव एवेंजर्स का वायुमंडल बदलेंगे, तब संसार का वायुमंडल बदलेगा। आपके अस्तान सेवा स्थान पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को और पावरफुल बनो। जिसको देखे लोग शिकल से, वाइब्रेशन से जान जाती है आजकल, क्योंकि आसुरी शक्ति का भी प्रभाव के बुद्धि में है, नॉलेज का भी प्रभाव है। जो भी मीटिंग में आए हो, हर एक जिम्मेवार हो,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Man.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है दीवर पुरुष।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस अति सूक्ष्म महीन होती जाती। ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना इन्हों को। साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है उसकी पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है तो साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना। बिजनेस भी होगा लेकिन रिफाइंड रूप में होगा। अभी का विज्ञान के इन्वेंशन फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइंड विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान है। ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी है उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइंड विज्ञान कार्य करने में मददगार बनेंगे। तैयार करो इंजीनियर्स को। चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे लेकिन रेगुलर नहीं बनेंगे, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है लेकिन निश्चय और खुशी में रहती, समत में सहयोगी रहती। ऐसी आत्माएं भी तैयार करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: विशे।

Adam Sandler.

इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वो डेट मांग रहे थे, बाप दादा मुस्कुराए, क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी बच्चों को बेहद

escúchame bien. Que tu corazón

जल्दी क्योंकि बाप दादा ने देखा है।

0: फिरते दे ही अब मान नहीं बनना। यही बेहद का मेरा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब दादा, अभी क्या चाहिए? हर बच्चा क्यों कह बाप दादा, कुछ समय से लेके वार्निंग दे ही रही है समय की। हर बच्चे क्या पढ़ाई का रिजल्ट का समय सदा एवर रेडियो।

समय

kesadaran bersyarat. Kita ranusan.

सोच नहीं सकता।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

0: Samantha, digo. Swaraj, Atika, digo. Swayam Bap ne mujhe kitne swaman diye. Ek ek swaman ko smriti mein lao to kitna nasha chadta hai. आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वो भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कितना वे आने का कारण थे अपमान का, मैं शब्द थे पान का, मैं एक है, मैं आत्मा हूं ये मैं, लेकिन थे पान के मैं शब्द अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता। तो बाप दादा आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको योग अग्नि में जलाओ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पका करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में चला के जाओ। अनेक मैं तो आज चलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है, तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो चलाना है, क्योंकि ये भी तो भोज है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ Shut up.

0: शारद हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शारद पे आगे बढ़ो, वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी शारद के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के साथियों
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष परवान है रूहानी नशा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।